एक दूसरे का मुतबादिल नहीं बल्कि एक दूसरे का मददगार बनती हैं। जहां सेंसर काम ना कर सके वहां इंसानी आँख का मुशाहिदा, और जहां मवासलाती नेटवर्क तबाह हो जाए वहां रिवायती तरीके जान बचा सकते हैं। इसके बावजूद कबल अस वक्त उठाए गए तमाम इकदाम के बाद भी अगर किसी नागुजीर आफत का सामना करना पड़ जाए तो हम अपनी जानों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इन ग्लेशियाई सैलाबों में जहां एक एक सेकंड कीमती होता है, वादियों के दामन में रहने वाले लोगों को जैसे ही खतरे की अलामत नजर आए या सायरन बजें फौरी तौर पर करीबी ऊंची और महफूज जगहों की तरफ भागना चाहिए। जदीद मवासलाती लाइनों के अचानक कट जाने की सूरत में मकामी लोगों को चीखने, सीटी बजाने या पहाड़ी ढलवानों पर नस्ब आवाज़ के निज़ाम जैसे मुतबादिल तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आसपास के और ऊंचे इलाकों के लोगों को बाखबर करना चाहिए। आफत के बाद अगर सड़कें और पुल टूट जाएं तो कट जाने वाले इलाकों तक पहुँचने के लिए मकामी वसाइल और दस्तियाब सामान का इस्तेमाल करते हुए आर्जी रास्ते या लटकते हुए पुल बनाए जाने चाहिए। जख्मियों और फंसे हुए लोगों तक जल्द अज जल्द पहुंचना चाहिए और जब तक पेशावराना टीमें वहां ना पहुंच जाएं, इब्तदाई तलाश, बचाव और इमदादी काम मकामी लोगों के बाहमी तावन और यकजहती से अंजाम दिए जाने चाहिए, क्योंकि बड़ी आफात में सबसे पहले मदद को पहुंचने वाले हमेशा मीलों दूर बैठी पेशावर टीमें नहीं होती। बाज़ औक़ात इब्तदाई मिनटों में जिंदगी बचाने वाला शख्स आपका बिल्कुल बराबर वाला हमसाया होता है। पहाड़ी देहातों और माहौलियाती बहरान से बराह रास्त मुतासर होने वाले हसास इलाकों में आफात के तबाहकुन असरात को कम करने और माहौलियाती पनाह गुजीनों को रोकने के लिए अगर ठोस इकदाम करने हैं तो सबसे पहले खतरे से दो चार ग्लेशियाई झीलों के पानी की सतह को कंट्रोल ड्रेनेज चैनल्स या साइफन सिस्टम के जरिए नीचे लाया जाना चाहिए। झीलों में पानी का हजम महफूज हद के अंदर रखना उनके अचानक फटने के खतरे को जड़ से ख़त्म करता है। दरिया के किनारों के बिल्कुल करीब आबाद और सैलाब के मुस्तकिल खतरे से दो चार देहातों के लिए सरकारी तावन से ऊंची और महफूज जगहों पर नई आबादियां तामीर की जानी चाहिए। मकामी लोगों के सकाफती रिश्तों को नुकसान पहुंचाए बगैर उन इलाकों में उनकी रजाकाराना और महफूज मुंतकली की हौसला अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि माहौलियाती हिजरत सिर्फ एक घर को छोड़ना नहीं है बल्कि बाज़ औक़ात ये एक पेशे, एक तर्ज जिंदगी, नस्लों से चली आने वाली रिवायात और पूरी बरादरी की मुश्तरका याददाश्तों को भी पीछे छोड़ जाने का नाम है। हिमालय की चोटियों से टूटने वाला बर्फ का हर तौदा सिर्फ किसी दूर दराज पहाड़ का पिघलना नहीं है बल्कि एक हजार साल पुरानी सकाफत और पानी से लिखी गई तारीख का मिट जाना है। नेपाल में आज जो कुछ हो रहा है वो कल दुनिया भर में आने वाली माहौलियाती हिजरत की एक झलक है। पहाड़ खामोश हैं लेकिन पिघलती हुई बर्फ हमें साफ कह रही है अगर हमने आज एहतियात ना की तो पीछे सिर्फ खामोश वादियां रह जाएंगी। क्योंकि माहौलियाती तब्दीली सिर्फ दर्जा हरारत का बढ़ना नहीं है, कभी इसका मतलब एक दरिया का अपना रुख बदल लेना होता है, कभी एक घर का खाली हो जाना और कभी किसी इंसान का अपनी जाय पैदाइश पर दोबारा कभी लौट कर ना आ पाना। पहाड़ खामोश हैं लेकिन पिघलते हुए ग्लेशियर्स हमें एक बिल्कुल वाज़े पैगाम दे रहे हैं। अगर हमने आज इकदाम ना किए तो कल हमारे पास ना सिर्फ खामोश वादियां होंगी बल्कि उजड़ी हुई जिंदगियां भी रह जाएंगी।

लीजिए सामिन, सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाप्त फरमाइए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन ने कहा है कि जंगी मुजरमों की जगह अक़वाम मुत्तहिदा का हाल नहीं, अदालतें हैं। ईरान ने कहा है कि मक्का मुआहिदा इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए उठाया गया कदम है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप के इनकार के बावजूद हम आबनाए हुर्मुज़ को बहरी सैर सफ़र के लिए खोलने की शराइत पर कायम हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन ने कहा है कि जंगी मुजरमों की जगह अक़वाम मुत्तहिदा का हाल नहीं, अदालतें हैं। सदर एर्दोगन ने कहा है कि नस्ल कुशी के मुर्तकिब अफराद का एहतसाब होना चाहिए और उन पर निगाह रखी जानी चाहिए ताकि वो कमरा अदालत में रहें, अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रिब्यून में नहीं। इस्तांबुल में मुनक़दा 21वें बैनुल अक़वामी

छुप अंधेरा। दोनों तरफ बुलंद होती हुई तारीखी पथरीली दीवारें और इन दीवारों के दरमियान गूंजती कदमों की आवाजें। तस्वीर कीजिए कि आप जमीन के नीचे कई मीटर गहराई में एक तंग गुजरगाह में आगे बढ़ रहे हैं। यहां आप आसमान नहीं देख सकते। आपको घेरने वाली वाहिद चीज पत्थर और मिट्टी की खामोशी है। लेकिन यह कोई आम गार नहीं है। यह एक शहर के बिल्कुल नीचे वक्त का मुकाबला करते हुए मौजूद एक और शहर का वजूद है। तो फिर एक शहर के दिफा का सबसे गैर मामूली तरीका क्या हो सकता है? ऊंची फसीलें खड़ी करना, बड़े बड़े दरवाजे बनाना, या फिर वक्त आने पर इन दीवारों को अपने ही हाथों से गिरा देना। 1191 में अस्कलान में लिया गया फैसला बिल्कुल यही था। दूसरी तरफ अका ने अपने दिफा को जमी के नीचे पत्थरों के दरमियान खुदी हुई सुरंगों में मुंतकिल कर दिया। और गजा में एक शहर को कायम रखने वाली ताकत न सिर्फ उसकी दीवारों में थी, बल्कि उन रास्तों से गुजरने वाले स्कॉलर्स, कारवानों और सदियों के जमा करदा गहरे विरसे में पोशीदा थी। फलस्तीन के जुग्राफिये की तकदीर लिखने वाले तीन तारीखी शहर, दिफा की तीन अलग कहानियां, और इन सब में एक मुश्तरक सवाल: एक शहर और वतन की हकीकी मानों में हिफाजत कौन सी चीज़?

करती है। अका बाहर रूम के साहिल पर एक कुदरती खलीज की गोद में आबाद कदीम मुहिमजुई का मरकज और बंदरगाही शहर, ये सदियों तक तिजारत, फौजी नकल व हरकत और हज के रास्तों का अहम तरीन पड़ाव रहा। जैसा कि यूनेस्को ने भी इस बात पर जोर दिया है कि अका कुरून वुस्ता से लेकर आज तक जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सांस लेते हुए एक गैर मामूली तारीखी वरसे का मालिक है। ममलूक दौर में होने वाली बड़ी तब्दीलियों के बाद सलीबी शहर का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी के नीचे दब गया और इसके ऊपर मौजूदा उस्मानी शहर तामीर किया गया। आज जमीन के नीचे इस तह में मौजूद सड़कें, मोहल्ले, इमारतें और एक पेचीदा जेर जमीन ढांचा इसी तरह महफूज है। अका की कहानी बिल्कुल इसी जगह से शुरू होती है। अगर एक शहर जमीन के ऊपर तबाह भी कर दिया जाए तब भी वो जमीन के नीचे जिंदा रह सकता है और अपनी शनाख्त बरकरार रख सकता है। इस जेर जमीन नेटवर्क की सबसे मशहूर इमारतों में से एक टेम्पलियर्स टनल है। आसार कदीमा की तहकीकात से पता चलता है कि तकरीबन 350 मीटर तवील यह पथरीली राहदारी बंदरगाह को तस्वीराती मकामात से जोड़ने वाली एक खुफिया लाइन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। जब जमीन के ऊपर जिंदगी रवा दवा थी तो जमीन के नीचे शहर की सलामती और राबते को यकीनी बनाने वाली एक खुफिया रिक का काम करते ही थी। बिलाशुबा अका की मज़ाहमत की कहानी सिर्फ कुरून वस्ता तक महदूद नहीं रही। जब 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इस शहर का मुहासरा किया तो जज़ार अहमद पाशा की क़यादत में उस्मानी फिलिस्तीनी दिफा ने फ्रांसीसी फौज को शिकस्त देकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अका ने दुनिया के सामने एक बार फिर साबित किया कि जब सही हिकमत अमली को यकजा किया जाए तो पत्थर किस तरह एक लाजवाल मज़ाहमत में बदल जाता है। जब हम साहिल के साथ साथ जुनूब की तरफ बढ़ते हैं तो अस्कलान हमारा इस्तकबाल करता है। मिस्र और शाम, बिलादुश्शाम के दरमियान अपने तस्वीराती महल वकूक की वजह से अरब जोग्राफिया में उरुसुल शाम कहलाने वाला यह कदीम शहर अपनी नाकाबिल तस्खीर दीवारों के लिए मशहूर था। ताहम तारीख में अस्कलान की सबसे इनकलाबी कहानी इन दीवारों को गिराने से लिखी गई। 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस शहर को सलीबियों से वापस लिया, लेकिन चंद साल बाद जब तीसरी सलीबी जंग शुरू हुई तो इस बात का खतरा पैदा हो गया कि यह शहर दुश्मन के हाथ लगकर एक मजबूत फौजी अड्डे में तब्दील हो सकता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने 1191 में एक इंतहाई मुश्किल लेकिन तस्वीराती फैसला लेते हुए अस्कलान की दीवारों को गिराने का हुक्म दे दिया। एक शहर की हिफाजत के लिए उसकी अपनी दिफाई दीवारों को अपने ही हाथों से तबाह कर देना पहली नज़र में यह एक बड़ा तजाद मालूम हो सकता है, लेकिन जंगी कानून और हिकमत अमली में यह एक इंतहाई निपातुला कदम था, क्योंकि मकसद अपनी दीवारों में पनाह लेना नहीं था बल्कि दुश्मन को इस ताकत को दोबारा फलस्तीनी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकना था। दर हकीकत अस्कलान की दीवारें सिर्फ एक दिफाई लकीर नहीं थीं, वो इस जमीन पर हाकमियत, फख्र और शनाख्त की अलामत थी। और गजा, गजा में कहानी किस किले से बढ़कर कुछ और बन जाती है, क्योंकि गजा को समझने के लिए नक्शे और इस नक्शे से गुजरने वाले रास्तों पर नजर डालना जरूरी है। मिस्र और शाम के दरमियान अहम तरीन शाहराह पर वाक़ गजा ताजिरों, जायरीन और फौजों का गुजरगाह था, लेकिन इस शहर का शायद सबसे कम जाना जाने वाला पहलू इसका एक अजीम इल्मी मरकज होना था। आज गजा का नाम बदकिस्मती से अक्सर कब्जे और जंगों के हवाले से लिया जाता है, हालांकि मोतबर जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में शाया होने वाली एक तालीमी तहकीक तारीखी दस्तावेजात के साथ ये वाज़ह करती है कि ममलूक दौर में गजा किस तरह एक इलाकाई फिक्री और इल्मी मरकज में तब्दील हुआ था। 1260 से 1516 के दरमियान गजा में की जाने वाली सरमाकारी ने यहाँ मजबूत तालीमी इदारों के क़्याम और उलमा के एक वसी हल्के की तश्कील की बुनियाद रखी। अयूबी और ममलूक दौर में मिस्र और शाम के दरमियान सफ़र करने वाले बहुत से मुहद्दिसीन और उलमा ने गजा में क़याम किया। यहाँ हदीस का दर्ज दिया और तसानीफ लिखी, यानी गजा न सिर्फ कारवानों का बल्कि फ़िक्र और इल्म का भी पड़ाव था। आप किसी शहर की अजमत का अंदाज़ा सिर्फ उसकी दीवारों की बुलंदी से नहीं बल्कि उसके पैदा करदा और मेहमान नवाजी पाने वाले इंसानों से लगा सकते हैं।

पता ने हमें जमीन के नीचे छुपी मुजाहिमत दिखाई, अस्कलान ने वक्त पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार तस्वीराती सोच सिखाई, और गजा ने यह साबित किया कि रास्ते सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि इल्म और सकाफत को भी मुंतकिल करते हैं। लेकिन इंसान ने जमीन को नापना, दीवारों को बुलंद करना और जेर जमीन सुरंगें खोदना सीखने के बाद अपनी नजरें एक और जगह जमा दी, आसमां पर। रात के वक्त किलों में पहरा देने वाले अंधेरे में अकेले नहीं थे, उनके सरों के ऊपर मौजूद सितारे उन्हें सिमत, वक्त और फासले का पता बताते थे। इंसान ने ना सिर्फ शहर की हिफाजत की बल्कि अपना रास्ता तलाश करने के लिए आसमां को पढ़ना भी सीखा। तो फिर इंसान ने आसमां को एक नक्शे की तरह पढ़ना कब और कैसे शुरू किया? अगली किस्त में हम जमीन के नीचे से आसमां की लापता वसतों तक फैले हुए इस सहर अंगेज सफर पर रवाना होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियां।

इथोपिया में 2020-2022 के दरमियान होने वाली तिग्रे जंग भले ही प्रिटोरिया माहदे के साथ इख्तिताम पजीर होगी, लेकिन इस तनाजे को जज्म देने वाले बुनियादी